0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के

अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। चाणक्य का कथन है, जो व्यक्ति अपने मन, क्रोध और इंद्रियों पर काबू पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। अब सुनिए भक्ति रचनाएं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस सुंदर कांड का भाग 297। संगीत सरता सुबह 6:45 पर सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से कलाकार गायक दिलशाद खां से बातचीत प्रस्तुति छाया गांगुली। इसे आप शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं। 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख एवं स्वर सविता सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम आप दिन में पुनः 2:00 सुन सकते हैं। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार, ये केंद्रित होगा अभिनेता के एन सिंह पर, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य

विद्यालय एनएसडी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीन, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेज श्री कामले। दिन में 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12 बजे समाचार, दिन में 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, दोपहर 4 बजे सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का भाग दूसरा, संपादन प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार सुनिएगा, जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से फिल्म आशिकी।

रात 8 बजे कार्यक्रम हवा मेल में सुनिए प्रसन्न तू मैं लेखन अशरफ अली सिद्दीकी, निर्देशन मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। रात 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत आलेख एवं स्वर सलमा सैयद, प्रस्तुत करता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का भाग 297। आज आप सुनेंगे।

विभीषण के श्रीराम के शरण जाने के साथ ही शत्रु की सेना का भेद जानने को रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी वास्तविकता वानरों से अधिक देर तक छिपी न रह सकी। वे पकड़ लिए गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उनका अंग भंग करके उन्हें लंका भेज दिया जाए। नाक कान काटे जाने की बात सुनकर गुप्तचर त्राही त्राही कर उठे और वानरों को ऐसा न करने के लिए श्रीराम की सौगंध दे दी। हाथ पांव बांधकर जब उन्हें लक्ष्मण जी के सम्मुख लाया गया तो दयालु लक्ष्मण ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। रावण के नाम एक पत्र देकर गुप्तचर

पितरों को ये मौखिक संदेश पहुंचाने को कहा कि सीता जी को सादर वापस लाकर वो श्री राम की शरण आए, अन्यथा अपना काल आया ही समझे। लंका पहुंचकर रावण से अपनी दुर्गति और लक्ष्मण का संदेश सुनाते हुए गुप्तचर शुक ने निवेदन किया, हे नाथ, वानर सेना का विवरण तो 100 करोड़ मुखों से भी करना संभव नहीं है। जिसने लंका जलाई और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसका बल तो अन्य वानरों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

0: 이사리다
1: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम ले आए हैं सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1985 में रिकॉर्ड की गई। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे स्टूडियो में मोहम्मद दिलशाद खान विराजमान है और संगीत सरता के माध्यम से हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दिलशाद खान साहब।
3: नमस्कार।
4: हाँ तो दिलशाद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के प्रति आपका ये झुकाव कब से हुआ और कैसे हुआ?
3: मेरी जिंदगी में गाने बजाने की शुरुआत पहले हुई है, यानी 3 साल की उम्र से। हमारी शुरुआत हुई तबले पे पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के हाथ में। बाद में हमारे घर में जो माहौल था वो गाने बजाने का माहौल, यानी बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, विलायत खान।

0: साहब, अलाउद्दीन खान साहब, हफीज अली खान साहब और हमारे वालिद साहब बहुत बड़े कॉन्शियस थे। उसी से ये जो शौक कहिए या पैशन कहिए, इसकी शुरुआत वहां से है
1: जी।
0: और बाद में वोकल म्यूजिक, शास्त्रीय गायन, ख्याल गायकी में
1: मुड़ गए आप।
0: मुड़ गए बड़े गुलाम अली खान साहब की, और सलामत अली खान साहब का गाना सुनने के बाद मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला था
1: जी।
0: और सन 62 से हमारे जिंदगी में मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी तारीफ या इससे बढ़ के कोई मौका नहीं है कि मुझे पद्मश्री उस्ताद फैयाद अली आजम खान साहब, जो किराने खराने के खलीफा हैं
1: जी,
0: उनकी शागिर्दी मुझे मिली। और हमारे जिंदगी में ये सबसे फख्र की बात है
1: कि आप उनके शागिर्द हुए।
0: उन्होंने मुझे सारे गायकियों, जितने घराने
1: जी
0: में अच्छी अच्छी चीज है उनको किस तरीके से हमारे गले में बैठाना है, वो सब उन्हीं की देन है।
1: निशाद साहब, मैं ये अभी जानने ही वाली थी, आपसे पूछने वाली थी कि आपने घराने का जिक्र किया था और आपकी गायकी में एक ही घराने की नहीं बल्कि कई घरानों का असर मिलता है, तो ये आप क्या घराने में विश्वास नहीं करते या जो भी घराने की अच्छी चीज आपको लगी वो अपने आप?
0: बहुत सही कह दिया आपने। मैं ये मानता हूँ कि ये ख्याल है या ठुमरी है या ध्रुपद है, धमार है, मालकोस में पंचम नहीं लगाना है, ये सब घराने की बात है, जो स्टैंडिंग रूल्स वो होते हैं। तो घराने में जो बात बन जाती है वो कुछ स्पॉन्सरशिप की बात होती है, यानी महाराजा वगैरह
1: जैसे आप
0: किसी उस्ताद को रख ले, वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, वो घराना बना लेता है। फिर साहब वो जहाँ रहते हैं उस जगह के नाम से दूसरा घराना तैयार हो जाता है। घराना जो है वो कलाकार की जो खूबी है और जो कमी है, दोनों मिला के घराना बनता है।
1: गायकी में जिस सप्तक तक आप पहुँच जाते हैं वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
0: लेकिन मेहरबानी है सर,
1: और इसका राज क्या है?
0: राज ये है कि गुलाम अली खान साहब को मैंने 4 सप्तक गाते हुए सुना है। वो तार अति तार के मध्यम तक वो गाते थे
1: जी।
0: और तार तारा उदारा मुदारा और मुदारा के बाद भी अति मंद सप्तक कहते थे। एक खास सिस्टम स्टाइल है और कुछ टेक्निक है।
1: आप अपने ये गायन के सिलसिले में आप बहुत जगह गए हैं, हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, जगह जगह आपके हिंदुस्तान में भी कंसर्ट हुए हैं लेकिन बाहर भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो ऑडियंस हैं, वहाँ के जो श्रोता हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत को सुन के? कुछ आपको फर्क लगा यहाँ के श्रोताओं में और विदेशी श्रोताओं में?
0: बहुत फर्क है। आप सुन के शायद चौंक जाएंगे कि मुझे कोई आकर पूछा कि साहब आप गौण मल्हार गा रहे थे, नट मल्हार गौण मल्हार के गंधार मल्हार में क्या फर्क है? और मैं मालकोस गाते वक्त जिसको स्वर भेद कह रहे हैं, अनोखा एक स्टाइल है गाने का, वो स्वर भेद में सरगम कर रहा था
1: जी।
0: और वो ऑडियंस में से आके उठ के कोई बाद में मुझसे मुलाकात करके बताया कि साहब आप स्केच चेंज करके गा रहे थे कोई 5 राग। तो मैं सोचता हूँ कि आप फॉरेन यानी विदेश या देश मत बोलिए, सिर्फ ये बोलिए जानकारी ऑडियंस में है और नहीं है बस।
1: धीरे धीरे ये हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि लोगों की कम हो रही है, जो आम जनता है उसकी रुचि उतनी नहीं है शास्त्रीय संगीत के प्रति। इसकी वजह क्या है और अगर वजह जो भी है उसमें हम कैसे उसके उनकी रुचि में सुधार ला सकते हैं?
0: अच्छा गाना समझने के लिए जानकारी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और लफ्ज ही इसका नाम ही है क्लासिकल म्यूजिक, यानी इट इज हैज गॉट अ क्लास बाय इटसेल्फ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास के लिए नहीं है, मास अगर उसको समझ सकते हैं तो ही कैन बिकम ऑल्सो ए क्लास।
1: सही बात कही आप।
0: और क्लासिकल म्यूजिक अच्छी हो या बुरी हो तो ऑडियंस को जैसा गाना बजाना दिया जाएगा
1: वो वैसा ही,
0: वही आदत पड़ जाएगी उनकी।
1: एक नवीनता आपने दी है ऑडियंस को, सुनने वालों को, और वो नवीनता है जुगलबंदी के रूप में। सभी जानते हैं कि आपकी बेगम साहिबा श्रीमती जी हैं, परवीन सुल्ताना जी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शास्त्रीय संगीत में आपने पहली ये जुगल जोड़ी बनाई है, तो ये इसके पीछे मकसद क्या था आपका? बिल्कुल नवीन चीज लगी है ये।
0: पहले ये कहूंगा कि ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है पंडित रविशंकर उस्ताद अली अकबर खान साहब की जोड़ी। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो जुगलबंदी दोनों गाएंगे वो एक उस्ताद के शागिर्द हो या उस्ताद शागिर्द।

0: तो भी गा सकते हैं। यानी एक ही घराने की तालीम अगर दोनों के पास ना हो तो जुगलबंदी नहीं होती है। इत्तेफाक से परवीन हमारी मेरी शागिर्द है और उसे हमारे स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रागियत सच्चाई को कायम रखते हुए भी हाउ यू कैन एक्सप्लोर, आप किस तरीके से उसको नए ढंग से सवाल जवाब के तौर पे, यानी अजी एक साथ सवाल कर रहे हैं दूसरे से जवाब मिल रहा है, उसी तरीके से। और हमारे उस्ताद ने खासतौर पर फयाज अहमद खान साहब के एक सिस्टम है बढ़त के सरगम के जिसमें सवाल जवाब आता है कि सबसे अच्छा जुगलबंदी गायन मैंने हमारे उस्ताद से सुना है, आप लोग सुने होंगे फयाज अहमद आजम खान साहब के, तो उस जोड़ी से ही मुझे सब कुछ स्टाइल के बारे में जानकारी मिली है।
1: अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे।
0: हाँ जी,
1: आपने भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फिल्मों में गाना गाया है।
0: बस क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे
1: गाया है
0: कुछ।
1: तो अगर आपसे कहें कि सुगम संगीत फिल्मों में गाए तो आप गाना चाहेंगे? मेरा मतलब
0: गाना चाहेंगे जरूर गा सकते हैं, अगर सबसे बड़ी बात हो गाना मुझे पसंद होना चाहिए
1: जी।
0: और आप शायद जानते हैं कि मैंने सिर्फ गाया ही नहीं, मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी आर्ट फिल्म आश्रय जो कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चुनी गई है
1: जी,
0: उसकी म्यूजिक मैंने दी है। उसमें कुछ गजलों हैं
1: जी,
0: उन गजलें गवाई मैंने
1: गाई नहीं
0: गाई भी है।
1: अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा
0: हूँ। सबसे बड़ी बात यह है
1: जी
0: कि वो गजल हो, ठुमरी हो, भजन हो, सुगम संगीत हो, ध्रुपद हो, धामार हो, मुझे ये जरूर पता है कि मुझे 12 स्वर चाहिए, मुझे कर्ण मुड़की सपाट गले का कंट्रोल चाहिए जो मैं किसी भी जगह जैसी मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: बस मैं इसीलिए
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कोई से भी गाने बजाने की स्टाइल कहिए उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक की तालीम बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, मैं आपसे ये इत्तेफाक रखती हूँ इस मामले में तो, और ये जान के बेहद अच्छा लगा क्योंकि संगीत तो संगीत है। बातें तो आपसे और भी बहुत सी करने चाह रहे थे लेकिन हमारी जो घड़ी है ना ये बिल्कुल अब इजाजत नहीं दे रही है हमें, तो इसलिए आपसे कहना होगा नमस्कार और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों से भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। अब सुनते हैं मोहम्मद दिलशाद खान का गाया राग ललित।

ये था मोहम्मद दिलशाद खां का गाया राग ललित। आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए थे इनसे की गई बातचीत और इनका गायन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना महल फिल्म का गीत राजकुमारी और जोराबाई की आवाजों में, रचना थी नक्षब जराचवी और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी।

0: नई दिल्ली फिल्म का गाना आवाज किशोर कुमार और साथियों की, रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है फूले बिसरे गीत। आइए सुने इसका अगला गाना।

अभी आपने सुना पतंगा फिल्म का गाना शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: अभी आपने सुना नगमा फिल्म का गीत आवाज़ शमशाद बेगम की, रचना जे नक्शब की और संगीत नौशाद का। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता, अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आज का ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म प्रिंस का गाना और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीत के बोल फारूक कैसर और धुन बनाई शंकर।

0: जयकिशन ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है हम हराही प्यार की।

0: अभी आपने सुना विश्वास फिल्म का गाना। मनहर और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में रचना थी गुलशन बावरा की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, किशोर कुमार अने साथियोना स्वरमां आ हतुं न्यू डेली फिल्मनुं गीत, शब्दकार शैलेन्द्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। आप सांभळी रह्या छो ध्वनि तरंगो मंडे मॉर्निंगमां विविध भारतीना। थोड़ी ज वारमां सांभळीए समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक

0: रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
6: आईएमडी ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल

0: उंझर सुवर्णपुर नुआपड़ा बलंगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमरीका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
2: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0111-3104-8-0111-3134-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद फरहत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहयान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

अभी आपने सुना था टेल मी ओ खुदा का गाना श्रेया घोषाल और अनुपम आमोद की आवाजों में, गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार

देश लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और अंधत्व से जूझ रहे लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। और नेत्रदान किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। इससे रोशनी आंखों की जो लोग खो चुके हैं उनको देखने में मदद मिलती है। तो ये बहुत ही नेक काम है। नेत्रदान करने से हम मृत्यु के बाद भी किसी की मदद कर सकते हैं और इससे समाज में दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ती है। नेत्रदान के लिए पहले से संकल्प लिया जा सकता है। तो नेत्रदान करें, किसी के जीवन में उजाला भरें। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आपने सुना द डर्टी पिक्चर का गाना, सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार रजत अरोड़ा, संगीतकार विशाल शेखर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो का गाना, शान और साथियों की आवाज में गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार हिमेश रेशमिया। और अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी, और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि इनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनु विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है। उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की तलाश प्रमुख रही। अमृता प्रीतम आज भी अपनी संवेदनशील और बेबाक लेखनी के कारण साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: Allah. Mencari penyelamat dengan Allah. Kadang kadang sama Allah.
1: Ya ya Allah. Saya tak tahu dia ini macam mana. Kalau mereka bersama Allah kau lihat lagi. Lagi ini kau beri nazar ke sana dan lagi.
2: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का

ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

के एन सिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। ए आर कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था।
1: क्या बोलो
2: कैसे आ गए?

0: चल मेरे साथ चल, जल्दी चल।
1: लेकिन बात क्या है?
0: अरे उठ तो सही, जल्दी चल।
1: जा रहा हूँ।
0: सही
1: चल। अरे मुझे अपने पाँव से चलने दे, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी।
2: हाँ,
1: देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला।
2: हाँ,
1: और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा।
2: हाँ,
1: लेकिन देख बूटी जड़ से उखाड़ कर लाइयो।
2: हाँ,
1: जल्दी से आ, जल्दी।

0: जोगा ये काम तो खत्म हो जाए, तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो। हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना। मैं शाम को आऊंगा।
1: जरा मेरा हाथ बुलाइए भाई।
2: मगर कहाँ जाओगे जी इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
3: नगीने शादी?
2: बैद जी।
3: बैद जी। बैद जी।
0: अरे कुछ कहेगा भी?
3: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी?
3: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैद जी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
4: बैद जी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
3: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
3: बैद जी भगवान भी कुछ जरूर है, देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
4: बैची है तो बड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोकाफ के परी को उठा लाए।
5: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक छोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: अरे वाह, अरे वाह वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई, यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे

बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के.एन. सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ప్రియతా బారీకీ రాగో కి శృంగార సురూ కా సమయ బీతా దౌర్ బదలే కాయమ్ హై సంగీత్ కి మధుర్ పాఠశాలా हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वडनेरकर ज्वेलर्स वडोदरामां सौभाग्यना दागीना तो फक्त वडनेरकर ज्वेलर्स ना ज। वडनेरकर ज्वेलर्स ब्रह्मपुरी दांडिया बजार वडोदरा।

दोस्तों, आ गजल हती आज एल्बम थी जगजीत सिंह ना स्वर में, सुदर्शन फकीर ना शब्दों हता अने गजल कंपोज करी हती जगजीत सिंह। आ साथ आज नो फिल्मी नॉन फिल्मी गजल नो कार्यक्रम अही समाप्त करिए छे। आ प्रसारण विविध भारती ना वडोदरा केन्द्र पर थी करवामां आव्युं। श्रोता मित्रों, आप सांभळी रह्या छो अपनी पोतानी रेडियो चैनल विविध भारती। प्रस्तुत छे फिल्मी गीतो फिल्म संगीतमां। आवी रह्युं छे फिल्म संगीत कार्यक्रमनुं आ पहेलुं गीत। आ छे नागमणी फिल्मनुं गीत सुरेश वाडकरना स्वरमां, महेन्द्र दहलवीना शब्दो અને અનુ મલિકનું સંગીત।

आपकी सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स दांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी सुरक्षा हमारी, यह है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में

प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहली दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये

भी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ यादगार सदाबहार गीतों की माला से। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जीएल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

मस्ताने का इश्क है दीवाने का और तीर होता है निशाने का मेरी तो

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है शर्मीली।

फिर आपको याद दिलाते चलें कि आज की इबारत क्या है। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार यहाँ जो ना करे वो खाक जिए खाक मरे, मर के भी जो ना मिटे ये वो दीवानगी। दूर रहे पास रहे दिल में तेरी प्यास रहे, प्यार के बिना ये भी कोई जिंदगी है। इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है यह गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियां ये बागपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर जाएगी, मेरी याद तेरा दिल तड़पाएगी, तौबा तौबा फिर क्या होगा। आखिर तो आप फूल हैं फौलाद नहीं, अरे बुलबुल है किसी बाग की सयाद नहीं। शमा के परवानों को इस घर के मेहमानों को कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को, कि एक से भले दो, दो से भले तीन। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिल वाले क्यों घबराए।

सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

मोहब्बत रूह का वो नूर है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। जो इस आग में ना जला उसने जीना ही कहाँ सीखा। ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि

अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेम पूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात, और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रेष्ठ वही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर आपको मिला, तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए? कोई घर छोड़

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि चार दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध, इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समुंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

0: हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदीवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माताजी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या है, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस। अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। और गंगू गणपत की जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था, उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू।

एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख उन्हें और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं, किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है, समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज

0: शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष

0: 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
1: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण

0: सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
0: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है। बस वो मिला, वो मुलाकात होती रहे, ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
1: बिल्कुल सही
0: दो
1: कहा।
0: लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
1: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह, जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
0: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
1: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल की जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
0: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था, और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आंखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां। और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थी सारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी?
2: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।

0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे हैं?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खेलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध

0: दिए जाए तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींचकर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
1: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
0: क्या?
1: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
0: अच्छा, वो क्यों भला?
1: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज छह आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
0: ये कैसे भला?
1: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
0: हाँ,
1: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्रॉम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्रॉम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदा, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।
0: तो
1: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया, मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
2: अब आप जाइए।
1: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
2: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
1: किशोर जी मैं चौंक उठा, मैंने कहा कि क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहाँ से।
2: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
1: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है?
2: होगा कोई 5 मील।
0: तो फिर आपने क्या किया?
1: किशोर जी मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा।

0: बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी। और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले ही चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
1: ओहो, ये बात है भीखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे,
1: अच्छा,
0: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
1: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती के से।
1: अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं। तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चले। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में से किसी एक

0: आपको कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
1: बिल्कुल, और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं प्यार और विश्वास, ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए ना इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है। लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज न करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
1: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
0: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या न हो, बड़ी घटना न हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग 2 का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया। और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन, मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
0: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है तब

0: तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है।
1: जी
0: बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहां पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब
1: जी
0: प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ, तो
0: बिल्कुल।
1: ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अभी गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहां बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल

0: का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है, भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी. यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन में,
1: अब उल्टा भी होने लगा है. हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी. अच्छा।
0: तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है, ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है. जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है. अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है. अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं.
1: बिल्कुल सही बात है. और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं. एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है. अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए, और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है. दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं.
0: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है. उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है.
1: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है. हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें. लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी. जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है. तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है. लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेन करना बहुत जरूरी है. अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए. अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं. तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे. तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है.
0: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है. और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं. अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते. तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है.
1: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है. और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है. अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहां भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं

0: कर पाता है तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: है। किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुत तेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहां केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है?
1: जी चलिए बताइए।
0: तो हमारी श्रोता ने यह लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।

0: अच्छा मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है, एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है, दूसरा जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में, इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
1: एक भ्रम है लोगों में,
0: अच्छा,
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता है,
0: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके।
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, स्टेज वन स्टेज टू अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
0: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी, ओके,
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी,
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं जिसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
1: चाहिए। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
0: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल्प का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल्प पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल्प को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
0: जी जी,
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
1: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
0: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह क्या झाग वाला शैम्पू है।
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
0: जी,
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चला जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
1: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल से। क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है

0: जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है, तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से,
1: ओके,
0: तो ड्राई नहीं होते हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए, भले ही आप 2 मिनट के लगाओ 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है,
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है
1: जी, बहुत इम्पोर्टेंट।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल

0: दिल से मेंटेन रहती है।
1: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक
0: है। तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है
1: जी।
0: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: इकोसिस्टम के हिसाब से अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
1: रूखे हो जाते हैं।
0: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं। तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
0: हफ्ते में 2 से 3 बार। आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला
1: जी। वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा
0: एक होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल।
0: दूसरा, मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है
1: जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
0: जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इम्प्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं. आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी. और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं. पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है.
0: हाँ.
1: कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है.
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये.
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स.
1: बट ये आपका फैशन है
0: जी.
1: पर ये फैशन आएगा, आपको नुकसान के साथ आएगा.
0: राइट.
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी.
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है, तो ये बैगेज के साथ आएगा. आप तैयार है उसके लिए? गो अहेड.
0: बहुत सही बात है. मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो.
1: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
0: ट्रेंड के साथ चलना.
1: ट्रेंड के साथ चलना. तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ. ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो.
0: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है.
1: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
0: जी. और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं. और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का. इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए.
1: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
0: जी. उसको रोक सकते हैं?
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है. कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है. 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में. और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं, उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें. तो उसको आपको कलर करना होता है. अभी कलर कौन सा करें? कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है. कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है, तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है.
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और अमोनिया फ्री कलर.
1: डैमेज कम हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल. डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है. जैसे ही आप वैसे ही, जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं. मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं. पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है.
0: बिल्कुल.
1: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में.
0: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है.
1: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
0: जी,
1: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल. तो ये जो डाई

0: करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूं। पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहां पर एक गाने की बारी है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: रहता है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
1: तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है?

0: शैम्पू डैंड्रफ के लिए है।
1: बताइए कि शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
0: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
1: अच्छा,
0: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया
1: जी,
0: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
1: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना है। जी, ये एक थंब रूल हो गया।
0: थंब रूल मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये मैसेज जाना चाहिए,
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
0: बहुत बड़ा मुद्दा।
1: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का। लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: यस।
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: यस,
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है हेयर ट्रांसप्लांट। और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, पर हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना
0: जी।
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल बालों के,
0: जैसे पौधे को यहाँ से हटा के
1: वहां लगा दिया।
0: जी जी। और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन, दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी

0: चल सकती है।
1: फंगल
0: इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है। तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
1: अच्छा, इतना सब करना पड़ता
0: इतना
1: है।
0: सब करना पड़ता है
1: जी।
0: एलोपेशिया एरेटा, अभी एलोपेशिया एरेटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं। ये 5-6 साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
1: जी जी।
0: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो, आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूं आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स डांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। यह है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।
1: दुनिया बनाने वाले सुन ले।

तड़पे तड़पे मेरी जवानी।

जल गया जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन।

जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन

0: धुआं हर जल गया जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िया है जापानी। अरे

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी।

0: हमारी।
1: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

मेरा फर्श पे छत। प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: मारना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया।
1: फिल्म जिद्दी।

0: ये गुड़िये हैं जापानी।
1: फिल्म अधिकार।
0: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: फिल्म अमानत।
0: रहने को घर दो।
1: फिल्म बीवी और मकान।
0: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनू वडोदरा केन्द्र। सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रलोक जेना प्रायोजक छे
2: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन वडोदरा नो आधुनिक शोरूम नवरंग सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
1: एम के फर्नीचर 5 माड नो भव्य शोरूम प्रतापनगर ब्रिज नीचे वडोदरा।
3: पूजा प्लस
4: पूजा मॉनसून सेल मा फायदा नो वरसाद
5: मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट।
4: पूजा प्लस रावपुरा वडोदरा
3: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों जिना प्रायोजक छे
2: आर्क ब्लाइंड्स शिवाकृति बिल्डिंग दांडिया बाजार वडोदरा।
3: सेहत आपकी सुरक्षा हमारी अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी।
2: ये है आर्क ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। कलाकार हैं गायक दिलशाद खां से बातचीत। प्रस्तुति छाया गांगुली। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। आज की फिल्म है आशिकी। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए प्रहसन तू तू मैं। लेखक अशरफ अली सिद्दीकी। निर्देशक मुख्तार अहमद। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता K.N. सिंह पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुति रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे छाया गीत में सुनिए सलमा सैयद को। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और रात्रि 11 बजे सुनिए रंग तरंग। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 298। सुबह 6:45 सुनिए संगीत सरिता। इसमें सुनिए नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 1। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावने का। प्रस्तुति रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा बालों की समस्या और देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुति तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे सुनिए सखी सहेली। कल के आकर्षण है दैनिक आहार और पोषण। सखी विशेष छाया नंजप्पा संस्थापक नेक्टर फ्रेश। हल्की फुल्की बातों में आप सुनेंगे मुफ्त का लालच। मुहावरों की दुनिया में कल का मुहावरा है मुंह में पानी आना। संवादक मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

दोपहर 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलुलाइट के सितारे। इसमें सुनिए अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। संपादन सहयोग रीमा जोशी का है, प्रस्तुति जुबैर खान। 6 गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 सुनिए तराने नए पुराने, संध्या रंजन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे जयमाला का प्रसारण होगा। इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए प्रहसन विवाह यंत्र भाग 1, लेखन NR टंडन, निर्देशक मुख्तार अहमद। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, आज के फनकार सुनिए रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावने का, प्रस्तुति रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति राघवेन्द्र नेगी। और ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम ले आए हैं सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1985 में रिकॉर्ड की गई। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे स्टूडियो में मोहम्मद दिलशाद खान विराजमान है और संगीत सरता के माध्यम से हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दिलशाद खान साहब।
2: नमस्कार।
3: हाँ तो दिलशाद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के प्रति आपका ये झुकाव कब से हुआ और कैसे हुआ?
2: मेरी जिंदगी में गाने बजाने की शुरुआत पहले हुई है, यानी 3 साल की उम्र से। हमारी शुरुआत हुई तबले पे पंडित गय प्रकाश घोष जी के हाथ में। बाद में हमारे घर में जो माहौल था वो गाने बजाने का माहौल, यानी बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, विलायत खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब, हफीज अली खान साहब और हमारे वालिद साहब बहुत बड़े कॉन्शियस थे। उसी से ये जो शौक कहिए या पैशन कहिए, इसकी शुरुआत वहां से है
1: जी।
2: और बाद में वोकल म्यूजिक, शास्त्रीय गायन, ख्याल गायकी में
1: मुड़ गए आप।
2: मुड़ गए बड़े गुलाम अली खान साहब की और सलामत अली खान साहब का गाना सुनने के बाद मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला था
1: जी।
2: और 1962 से हमारे जिंदगी में मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी तारीफ या इससे बढ़ के कोई मौका नहीं है कि मुझे पद्मश्री उस्ताद फैयाज़ुद्दीन आज़म खान साहब, जो किराने घराने के खलीफा हैं
1: जी,
2: उनकी शागिर्दी मुझे मिली। और हमारे जिंदगी में ये सबसे फख्र की बात है
1: कि आप उनके शागिर्द हुए।
2: उन्होंने मुझे सारे गायकियों, जितने घराने
1: जी
2: में अच्छी अच्छी चीज है उनको किस तरीके से हमारे गले में बैठाना है वो सब उन्हीं की देन है।
1: निशाद साहब, मैं ये अभी जानने ही वाली थी, आपसे पूछने वाली थी कि आपने घराने का जिक्र किया था और आपकी गायकी में एक ही घराने की नहीं बल्कि कई घरानों का असर आप मिलता है, तो ये आप क्या घराने में विश्वास नहीं करते या जो भी घराने की अच्छी चीज आपको लगी वो अपने आप?
2: बहुत सही कह दिया आपने। मैं ये मानता हूँ कि ये ख्याल है या ठुमरी है या ध्रुपद है, धमार है, मालकोस में पंचम नहीं लगाना है, ये सब घराने की बात है। जो स्टैंडिंग रूल्स
1: जी
2: वो होते हैं
1: जी।
2: तो घराने में जो बात बन जाती है वो कुछ स्पॉन्सरशिप की बात होती है, यानी महाराजा वगैरह
1: जैसे आप
2: किसी उस्ताद को रख लिए, वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो घराना बना लेता है। फिर साहब वो जहाँ रहते हैं उस जगह के नाम से दूसरा घराना तैयार हो जाता है। घराना जो है वो कलाकार की जो खूबी है और जो कमी है दोनों मिला के घराना बनता है।
1: गायकी में जिस सप्तक तक आप पहुंच जाते हैं वो आपका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है।
2: मालिक की मेहरबानी है।
1: और इसका राज क्या है?
2: राज ये है कि गुलाम अली खान साहब को मैंने 4 सप्तक गाते हुए सुना है। वो तार अति तार के मध्यम तक वो गाते थे
1: जी।
2: और तार तारा उदारा मुदारा और मुदारा के बाद भी अति मंद सप्तक कहते थे। एक खास सिस्टम स्टाइल है और कुछ टेक्निक है।
1: आप अपने ये गायन के सिलसिले में आप बहुत जगह गए हैं।

0: हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, जगह जगह आपके हिंदुस्तान में भी कंसर्ट हुए हैं, लेकिन बाहर भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो ऑडियंस हैं, वहाँ के जो श्रोता हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत को सुन के? कुछ आपको फर्क लगा यहाँ के श्रोताओं में और विदेशी श्रोताओं में?
1: बहुत फर्क है। आप सुन के शायद चौंक जाएंगे कि मुझे कोई आकर पूछा कि साहब आप गौड़ मल्हार गा रहे थे, नट मल्हार गौड़ मल्हार के गंधार मतलब अच्छा, क्या फर्क है? और मैं मालकोस गाते वक्त जिसको स्वर भेद कह रहे हैं, अनोखा एक स्टाइल है गाने का, वो स्वर भेद में सरगम कर रहा था
0: जी।
1: और वो ऑडियंस में से आके उठ के कोई बाद में मुझसे मुलाकात करके बताया कि साहब आप स्केल चेंज करके गा रहे थे कोई
0: अच्छा।
1: पांचों राग। तो मैं सोचता हूँ कि आप फॉरेन यानी विदेश या देश मत बोलिए, सिर्फ ये बोलिए जानकारी ऑडियंस में है और नहीं है बस।
0: हाँ, धीरे धीरे ये हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि लोगों की कम हो रही है। जो आम जनता है उसकी रुचि उतनी नहीं है शास्त्रीय संगीत के प्रति, इसकी वजह क्या है? और अगर वजह जो भी है उसमें हम कैसे उसकी उनकी रुचि में सुधार ला सकते हैं?
1: अच्छा गाना समझने के लिए जानकारी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और लफ्ज ही इसका नाम ही है क्लासिकल म्यूजिक, यानी इट इज हैज गॉट अ क्लास बाय इटसेल्फ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास के लिए नहीं है, मास अगर उसको समझ सकते हैं तो ही कैन बिकम ऑल्सो ए क्लास।
0: सही बात कही आप।
1: और क्लासिकल म्यूजिक अच्छी हो या बुरी हो तो ऑडियंस को जैसा गाना बजाना दिया जाएगा
0: वो वैसा ही
1: वही आदत पड़ जाएंगी उनकी।
0: एक नवीनता आपने दी है ऑडियंस को, सुनने वालों को, और वो नवीनता है जुगलबंदी के रूप में। सभी जानते हैं कि आपकी बेगम साहिबा श्रीमती जी हैं, परवीन सुल्ताना जी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शास्त्रीय संगीत में आपने पहली ये जुगल जोड़ी बनाई है, तो ये इसके पीछे मकसद क्या था आपका? बिल्कुल नवीन चीज लगी है ये।
1: पहले ये कहूंगा कि ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है पंडित रविशंकर उस्ताद अली अकबर खान साहब की जोड़ी से। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो जुगलबंदी दोनों गाएंगे वो एक उस्ताद के शागिर्द हो या उस्ताद शागिर्द हो तभी गा सकते हैं। यानी एक ही घराने की तालीम अगर दोनों के पास ना हो तो जुगलबंदी नहीं होती है।
0: इत्तेफाक
1: से परवीन हमारी मेरी शागिर्द है और उसे हमारे स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रागियत सच्चाई को कायम रखते हुए भी
0: जी,
1: हाउ यू कैन एक्सप्लोर, आप किस तरीके से उसको नए ढंग से सवाल जवाब के तौर पे, यानी अजीब एक साथ सवाल कर रहे हैं दूसरे से जवाब मिल रहा है, उसी तरीके से। और हमारे उस्ताद ने खास तौर पर फयाज अहमद खान साहब के एक सिस्टम है बढ़त के सरगम के जिसमें सवाल जवाब आता है कि सबसे अच्छा जुगलबंदी गायन मैंने हमारे उस्ताद से सुना है, आप लोग सुने होंगे फयाज अहमद आजम खान साहब के, तो उस जोड़ी से ही मुझे सब कुछ स्टाइल के बारे में जानकारी मिली है।
0: अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे।
1: हाँ जी।
0: आपने भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फिल्मों में गाना गाया है,
1: बस क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे
0: गाया है
1: कुछ भी,
0: तो अगर आपसे कहें कि सुगम संगीत फिल्मों में गाएं तो आप गाना चाहेंगे? मेरा मतलब
1: गाना चाहेंगे जरूर गा सकते हैं, अगर सबसे बड़ी बात हो गाना मुझे पसंद होना चाहिए
0: जी।
1: और आप शायद जानते हैं कि मैंने सिर्फ गाया ही नहीं, मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी आर्ट फिल्म आश्रय जो कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चुनी गई है
0: जी,
1: उसकी म्यूजिक मैंने दी है, उसमें कुछ गजलों हैं
0: जी,
1: उस गजलें गवाई मैंने
0: गाई नहीं
1: गाई भी है।
0: अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि वो गजल हो, ठुमरी हो, भजन हो, सुगम संगीत हो, ध्रुपद हो, धामार हो, मुझे ये जरूर पता है कि मुझे 12 स्वर चाहिए, मुझे कर्ण मुड़की सपाट गले का कंट्रोल चाहिए जो मैं किसी भी जगह जैसी मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
0: बस मैं इसीलिए
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कोई से भी गाने बजाने की स्टाइल कहिए उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक की तालीम बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, मैं आपसे यही इत्तेफाक रखती हूँ इस मामले में तो, और ये जान के बेहद अच्छा लगा क्योंकि संगीत तो संगीत है। बातें तो आपसे और भी बहुत सी करने चाह रहे थे, लेकिन हमारी जो घड़ी है ना, ये बिल्कुल अब इजाजत नहीं दे रही है हमें, तो इसलिए आपसे कहना होगा नमस्कार और बहुत बहुत

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों से भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। अब सुनते हैं मोहम्मद दिलशाद खान का गाया राग ललित।

ये था मोहम्मद दिलशाद खां का गाया राग ललित। आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए थे इनसे की गई बातचीत और इनका गायन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

सुनिए फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जय माला। सभी फौजी साथियों को प्रीति शर्मा का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह देशभक्ति गीत के साथ आज हमने इसे लिया है फिल्म एलओसी कारगिल से। इसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का है।

अभी आपने सरगम फिल्म का गाना सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लैला मजनू फिल्म का ये गाना।

फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में सभी फौजी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म एक नजर से, इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की आवाजों में है। फिल्म का नाम है चांदनी, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रहसन तू तू मैं। लेखक हैं अशरफ अली सिद्दीकी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: हजरात हजरात हजरात
2: नहीं, पहले खवातीन।
1: हाँ तो खवातीन, हजरात और बच्चों।
2: बच्चे नहीं।
1: हाँ, ये मुशायरा जो आपका मुशायरा है, गोया कि ये मेरे लिए कोई खास कोई हकीकत ही नहीं रखता। मैंने खुरासान में इससे बहुत बड़े बड़े मुशायरों में सदारत की है, और गोया कि यहाँ इस मौके पर, यानी कि इस मुशायरे में, मेरा मतलब है कि इस जगह कोई ज्यादा फारसीदा लोग नहीं है। यहाँ तो मैं कह रहा था कि मैंने बहुत काबिल लोगों के मुशायरों की सदारत की है। जी हजरात, माँ की जगह मेरी नजर में कोई खास, यानी कि मेरा मतलब है कि मैं क्या कह रहा था। हाँ ठीक है, मैंने खुरासान में बहुत बड़े बड़े मुशायरों की सदारत की है, और मेरे तखयल ने वहां परवास की है जहां आप हजरात के फरिश्ते नहीं जा सकते। खामोश हजरात, खामोश। अब मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाती है। आपके सामने उस्ताद वक्त जनाब गुम्बद गोला गोकरण नाथवी अपना कलाम बलागत निजाम आपके सामने पेश फरमाएंगे। जनाब गुम्बद गोला गोकरण नाथवी साहब।
3: इजाजत है हुजूर?
1: जी हाँ जी हाँ, फरमाइए फरमाइए फरमाइए।
3: एक मुख्तसर सी गजल के सिर्फ 63 अशआर पेश करता हूँ। मतला अर्ज है, शायरी में मेरा जवाब नहीं,
1: शायरी में मेरा जवाब नहीं।
3: आजा बैठे आजा बैठे। अरे भाई, शायरी में मेरा जवाब नहीं, और हुजूर मेरी गजलों का कुछ हिसाब नहीं। आजा बैठे आजा बैठे आजा बैठे। दूसरा शेर मुलायजा हो, यानी के जरा हुस्न तशबीह मुलायजा फरमाइएगा। फरमाता हूँ, उनके चेहरे पे भी नकाब नहीं,
1: उनके चेहरे पे भी नकाब नहीं।
3: आधा बज, उनके चेहरे पे भी नकाब नहीं, और साहब मेरी दाढ़ी में भी खिजाब नहीं। माफ कीजिएगा, मैं पहले मिसरा सारी पढ़ गया, यानी कि
1: तो मक्ता पढ़िए साहब, मक्ता पढ़िए,
3: यानी कि जनाब ये आप लोगों की बेअदबी है, आप लोगों की जल्दबाजी है। अभी तो पूरे 61 शेर बाकी हैं।
4: अजी साहब बैठ जाइए बैठ जाइए।
3: अच्छा तो हजरात, मक्ता मक्ता ही सुन लीजिए। अर्ज है, जिसमें लिखा है हाले दिल गुम्बद,
1: जिसमें लिखा है हाले दिल गुम्बद,
3: जिसमें लिखा है हाले दिल गुम्बद, भाई उनके मकतब में वो किताब नहीं।
1: खामोश, इज्जत अफजाई। खामोश हजरात, मेरा मतलब है खामोशी।

0: ज़रा नवाजी,
1: क्या इलाही शेर फरमाया आपने?
2: शेर नहीं, हकीकत बयानी है।
0: आदाब अर्ज़, अदब शनासी है आपकी, शेर सुनिए।
3: जी हाँ, इरशाद फरमाइए।
0: डोली से मैंने कब झांका,
3: नौज डोली से मैंने कब झांका।

0: बिल्कुल सही फरमाया साहब, आप जोड़ी से झांकी नहीं सकते हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब तंदे साहब, क्या शेर कहा है आपने, सुभान,
1: कलम तोड़ के रख दिया।
0: वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब फरमाया।
2: उफिए चिल्ले की

0: 让咱们来呀，
1: Muchas gracias.

0: है।
1: इस निगोड़ी की तारीफ नहीं हो सकती, क्या बात है।
0: मख्तार है
2: जी,
0: उनके कुर्ते का फट गया दामन,
1: उनके कुर्ते का फट गया दामन,
0: उनके

मैं मैं। अभी आप सुन रहे थे अशरफ अली सिद्दीकी का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे मुख्तार अहमद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म पाठशाला से, इसे गाया है सलीम मर्चेंट ने। गीत और संगीत हानिफ शेख का है।

आइए सुनते हैं शाहिद मालिया की आवाज में बिट्टू बॉस फिल्म का गाना, गीत असीम अहमद अब्बासी का है, संगीत राघव संचार का।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज में शेफ फिल्म का गाना। इसे लिखा है रश्मि विराग ने, संगीत अमाल मलिक का है।

0: સિનેમા રોડ, રાવપુરા, વડોદરા.
1: એમ કે ફર્નિચર, પાંચ માળનો ભવ્ય શોરૂમ, પ્રતાપનગર બ્રિજ નીચે, વડોદરા.
2: પૂજા પ્લસ.
3: પૂજા મોનસૂન સેલમાં ફાયદાનો વરસાદ,
4: મેન્સ ગાર્મેન્ટ પર 50% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ.
3: પૂજા પ્લસ, રાવપુરા, વડોદરા.
2: સવારે 10 વાગે ફોન ઇન તથા અન્ય લોકપ્રિય કાર્યક્રમો જેના પ્રાયોજક છે
0: આર્ક બ્લાઇન્ડ્સ, શિવાકૃતિ બિલ્ડિંગ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા.
2: સેહત આપકી, સુરક્ષા હમારી, અબ નહીં રહેગી મચ્છરો સે પરેશાની.
0: યે હે આર્ક બ્લાઇન્ડ્સ કી જિમ્મેદારી.
5: હર રોજ સુબહ 7 બજે સુનિયે કાર્યક્રમ ભૂલે બિસરે ગીત, જિસકે પ્રાયોજક હૈ વીકો વજ્રદંતી. મજેદાર નહીં અસરદાર, ભારત કા ગમ એક્સપર્ટ.
6: है कंटेम्पररी है वो, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है.
7: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
6: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने. उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया.
7: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
6: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
7: जी.
6: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है.
7: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे.
6: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है.
7: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में द स्काई इज पिंक फिल्म का गाना. गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत प्रीतम का.

अभी आपने इशकजादे फिल्म में जावेद अली और श्रेया घोषाल को सुना, आइए अब सुनते हैं के की आवाज में जिसमें टू फिल्म का गाना, गीत आरको प्रभो मुखर्जी और मुनीश मखीजा का है, संगीत आरको प्रभो मुखर्जी का।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच

0: लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयीय समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है

0: कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म लहू के दो रंग से। इसे लिखा फारूक कैसर ने, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में घर एक मंदिर फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुर फिल्म का गाना। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत निदा फाजली का है, संगीत MM करीम का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से।

के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

जानवरों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए, और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

पढ़ाई खत्म करके के एन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ा।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे। पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

कि एनसिंग को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए

के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। ए आर कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था।
1: कैसे
2: बोलो
1: कैसे
2: इतने कमरे कैसे आ गए?
1: चल मेरे साथ चल।
2: हाँ। जल्दी चल।
1: लेकिन बात क्या है?
2: अरे
1: उठ
2: तो सही।
1: अरे मुझे अपने पाँव से चलने दे, मैं कूद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी।
3: हाँ।
1: देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी से आ जल्दी।

0: भाई ये काम तो खत्म हो चला, ये जरा अच्छी तरह से ध्यान रखियो। ये लिप सूख जाए तो और लगा देना, मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ धुलाइए भाई।
1: ओहो मगर कहाँ जाओगे वैजी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
1: नगीने शादी? वैजी वैजी वैजी।
0: अरे कुछ कहेगा भी?
1: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी?
1: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो, क्यों बैठे?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
2: बैठी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
1: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
1: बैठी भगवान देखो जरूर है
0: तो?
1: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
2: बैठी

0: खूबसूरत क्यों?
1: हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कूकाफ के परी को उठा लाए।
2: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुना सरदारा की आल

शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिनप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब किसी के भी इशारे में नहीं आएंगे हम, मोहब्बत के खसारे में नहीं आएंगे। आगे भी आएंगे मेरे जज्बात मोहब्बत वाले, हाँ मगर आपके बारे में नहीं आएंगे। आप जो भी रद्दे बला का वजीफा कर लें, हम वो जादू हैं जो उतारे में नहीं आएंगे।
1: मेरे दिल से

तेरे लौट आने की दुआ अब नहीं करते, तुझको पाने की दुआ अब नहीं करते। तेरी जुदाई ने ये हुनर सिखा दिया हमको, किसी के दर पे जाने की दुआ अब नहीं करते। जो ख्वाब तेरी आंखों से वाबस्ता कर लिए थे, उन ख्वाबों के सवर जाने की दुआ अब नहीं करते। बिखर के खुद ही समेटा है अपनी जात को तन्हा, किसी सहारे के मिल जाने की दुआ अब नहीं करते। जो जख्म वक्त ने बख्शे वो अपने हो गए आखिर, हर दर्द के मिट जाने की दुआ अब नहीं करते। अब इतना जर्फ तो हासिल हुआ हमें जख्म खाकर, हर खुशी के मिल जाने की दुआ अब नहीं करते। तेरे बगैर भी कट ही जाएगी उम्र बेकरार, किसी परिंदे के लौट आने की दुआ अब नहीं करते। रहा नहीं वो यकीन जो तेरी वफा पे था कभी, किसी महबूब पे मर जाने की दुआ अब नहीं करते।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये कमरा, ये दीवारें, ये दरो दीवार सब गवाह हैं मेरी तन्हाई के। हर बात में तुम्हारी कमी, ये घर और ये खामोशी का बसेरा, एक दर्द भरा दिल जिसमें रह गई तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आरजू। जिंदगी तेरे बाद होना थी मुश्किल, लेकिन ये ना सोचा था कि इस हाल में आ जाएंगे। कितने मौसम देकर मुझे ताने गुजर गए, तुम तो कहते थे कि एक साल में आ जाएंगे, मगर कभी लगता है कि काश कहे गए लफ्ज रोक लेते, काश ना कहे गए लफ्ज कह देते। यही काश दिल में रहकर सारी रात सोने नहीं देते।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जाने कहाँ तुम

0: नमस्कार,
1: विविध भारती
0: आकाशवाणी समाचार के साथ हम तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।

0: रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: You